तामा, पीतल, स्टील, कांच, प्लास्टिक तथा किचन का सामान होलसेल मूल्य में खुद्रा बिक्री करने स्टोर्स नवयुनिक गिफ्ट एंड किचन स्टोर्स पोखरा 50 किलोमीटर प्रोप्राइटर विष्णुदत्त मिश्र संपर्क 9856012046 9852010504 साथ ही कुखुरा को दाना पानी को भाड़ा थोक मूल्य में उपलब्ध छ।

0: हमारी उन्नति हो, इससे हमारा भला। कोई बुरा करने के लिए, अपना बुरा करने के लिए कोई मंदिर में प्रसाद नहीं चढ़ाता है। कोई अपना बुरा करने के लिए, अपना बुरा निजी बुरा करने के लिए कोई स्वप्न नहीं देखता है। किसी तरीके से हमारा भला हो, हमारी यही ख्वाहिश है।
1: थप जानकारी का लागि premrawat.com अथवा 01-590-1765 र 98-43-1650 संपर्क गर्न सक्नुहुन्छ।

तामा, पितल, स्टील, कांच, प्लास्टिक तथा किचन का सामान होलसेल मूल्य में खुद्रा बिक्री करने स्टोर्स नवयुनिक गिफ्ट एंड किचन स्टोर्स पोखरा 50 किलोमीटर प्रोप्राइटर विष्णुदत्त मिश्र संपर्क 9856126 9852110504 साथ ही कुखुरा को दाना पानी को भाड़ा थोक मूल्य में उपलब्ध।

तामा पितल स्टील कांच प्लास्टिक थाक किचन का सामान होलसल मूल्य में खुद्रा बिक्री करने स्टोर्स नवयुनिक गिफ्ट एंड किचन स्टोर्स पोखरा 50 किलोमीटर प्रोप्राइटर विष्णुदत्त मिश्र संपर्क 9856120046 9852010504 साथ ही कुखुरा को दाना पानी को भाड़ा थोक मूल्य में

अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 97050 50508 97055 0557 मुलसरा 7 चिकन बिरयानी हजुरकै सहर पोक।

अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 97050 50508 97055 0557 मुलसरा 7 चिकन बिरयानी हजुरकै सहर पोखरा।

तामा पितल स्टील कांच प्लास्टिक तथा किचन का सामान होलसेल मूल्य में खुद्रा बिक्री करने स्टोर नवयुनिक गिफ्ट एंड किचन स्टोर पोखरा 50 किलोमीटर प्रोप्राइटर विष्णु दत्त मिश्र संपर्क 9856-1246 9852-10504 साथ ही कुखुरा को दाना पानी को भाड़ा थोक मूल्य में उपलब्ध छ। यदि तपाईं वैदेशिक रोजगारीमा जाने मनसाय बनाइरहनु भएको छ भने नागढुंगा पोखरामा रहेको नेशनल एक्सपोर्ट मेन पावर कन्सल्टेन्सीलाई सम्झनुहोस्। दुबई कतार साउदी मलेसिया सहित रोमानिया लगायतका युरोपियन राष्ट्रका विभिन्न कम्पनीमा वैदेशिक रोजगारीको सुवर्ण अवसर। कुक किचन हेल्पर वेटर सेक्युरिटी गार्ड फ्याक्ट्री वर्कर डेलिभरी बोय ड्राइभर हाउसकिपिङ हेल्पर क्लिनर लगायतका क्षेत्र वैदेशिक रोजगार जान चाहनुहुन्छ भने सम्झनुहोस्। खाना बस्नको सुविधा सहित मासिक तलब न्यूनतम 40,000 देखि 1,00,000 सम्म। सम्पर्क नेशनल एक्सपोर्ट मेन पावर कन्सल्टेन्सी प्राइभेट लिमिटेड नागढुङ्गा पोखराहाट कास्की। फोन नम्बर 061-553-071 98067-81234 97050-77123 व्हाट्सएप नम्बर 98011-77123।

0: सफलता 103.4 MHz
1: सुन्न मन लायो।
2: बेबी नी बेबी तेरी अख देवे डोपामीन, हल्का जा सानू तेरा टच देवे डोपामीन।

अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 97050 50508 97055 0557 मुलसरा 7 चिकन बिरयानी हजुरकै सहर।

अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 97050 50508 97055 0557 मुलसरा 7 चिकन बिरयानी हजुरकै सहर पोखरा।

अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 97050 50508 97055 55 07 मनसरा तात चिकन बिरयानी पोखरा 8 जालपा रोड।

अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 97050 50508 97055 0557 मुलसरा 7 चिकन बिरयानी हजुर के सहर पोक।

अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 9705050508 9705050507 मनसरा 7 चिकन बिरयानी हजुर के शहर पोखरा।

0: अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 97050 50508 97055 0557 मुलसरा तात चिकन बिरयानी पोखरा 8 जालपा रोड
1: विगत को 20 वर्ष देखि हजुरको सेवामा समर्पित
2: वेस्ट सल्फर ले आयो नया जम्बो कम्बो अफर अब मात्र 12,000 मा एक वर्ष को टीवी प्लस इंटरनेट सर्विस 19,500 मा दुई वर्ष को टीवी प्लस इंटरनेट सर्विस
1: अब सबैको लागि वेब सर्फर भरपर्दो विश्वासिलो हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट र टीवी सर्विस देश को पूर्व देखि पश्चिम सम्म फैलिएको हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट आईपीटीवी डिजिटल टीवी कर्पोरेट इंटरनेट इंट्रानेट र डेटा सेंटर सर्विस आदि सेवा वेब सर्फर नेपाल अरु भन्दा फरक सबै भन्दा विश्वसनीय नेपाल भरि फाइबर इन्टरनेट र टीवी सर्भिस सेवाको लागि वेब सर्फर घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टीवी सर्भिस
3: कन्ट्याक्ट 0615553050 0615589848
1: फर मोर डिटेल्स विजिट www.websurfer.com.np